नाज़रीन और सामईन, आज का प्रोग्राम मुतफरकात लेकर आपकी खिदमत में हाज़र हैं। एक तवील वक्फ़े के बाद इस वक्फ़े के दौरान भी कुछ रेडियो के मुतलका ही काम होता रहा, वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो यकीनन आपके सामने उसे पेश करेंगे। प्रोग्राम हसब दस्तूर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात अल्लामा इकबाल की ही होगी, लेकिन वो ज़रबे कलीम से नहीं है, वो एक मौजू के मतलब है जिसे हमारी ज़िंदगियों में ख़ास तौर पर बड़ा जो अहमियत हासिल है। जब भी कोई चीज़ होती है, जब भी कोई वाकया कोई सानहा होता है, हम उसे तकदीर का नाम दे देते हैं, मुकद्दर का नाम दे देते हैं। इस हवाले से अल्लामा इकबाल के एक पोस्ट देखी तो उसे पढ़ के पाकिस्तान के सियासी हालात और फिर तकदीर के मुतल्लिक अल्लामा इकबाल के चंद शेर जहन में गूंजने लगे, उन पे बात करेंगे। तो जी आजकल जो है वो पाकिस्तान में जी वो निज़ाम की नाकामी की आवाज़ें इधर उधर से सुनाई देती हैं, जिसका सबसे पहले शोशा हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने छोड़ा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये निज़ाम गल सड़ चुका है। तो जब निज़ाम के गलने सड़ने की और उसकी नाकामी की बात होती है तो इसका लामहाला यही नतीजा अखज किया जा सकता है कि जी अब कोई नया निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है, मौजूदा निज़ाम का बोरिया बिस्तर गोल करने की बात की जा रही है। चनाचे फिर जो असल ताकत के कर्ता धरता होते हैं वो अपने लिए रास्ता हमवार करने के लिए ना मुख्तलिफ बंदे छोड़ देते हैं, जो मुख्तलिफ हवालों से इस तरह के बयानात जारी करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं जो उस मंसूबे के लिए उन अजायम के लिए रास्ते को हमवार करें जो अजायम ताकतवरों के होते हैं। तो वो जो निज़ाम की ख़राबी की बात हुई तो वो मैंने जो कहा कि एक पोस्ट नज़रों से गुजरी, तो जी वो एक पोस्ट थी, एक माहिर इल्म नजूम हैं, वो अक्सर मुख्तलिफ टॉक शोज़ टाइप या एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में बैठती हैं, तो वो आने वाले मेहमानों का सितारों के हवाले से उनका मुस्तकबिल उनकी शख्सियत के मतलब बताती हैं। तो उन्होंने भी ये जी निज़ाम की ख़राबी के मतलब एक दो उनकी पोस्ट बयानात या पेशीन गोइयाँ भी नज़र से गुजरी, जो दी पाकिस्तान पता नहीं बोलना ऑनलाइन अखबार है तो उसमें थी। तो वो पेशीन गोई क्या थी कि जी वो फरमा रही थी जो नया सिस्टम बनेगा वो 11 से 12 साल चलता नज़र आ रहा है। एक बात, इस मुल्क में हम जमहूरियत अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिन मुल्कों में बादशाहत है क्या इन मुल्कों ने तरक्की नहीं की। तीसरी बात, चौथी बात कि अल्लाह के हुक्म से इस मुल्क में सिस्टम तब्दील होना है और इसी ने मुल्क को बदलना है। यकीन करिए ये जो बातें उन्होंने कहीं, जो पेशीन गोइयाँ उन्होंने की हैं, ये कोई नई नहीं है। अगर आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख पढ़ी होती तो ये सारी बातें आपके जहन में गूंज जाती कि इस जाल में तो हमें पहले भी फंसाया गया था। जाल पुराना है, शिकारी नए हैं, चेहरे नए हैं, जाल वही है जो जिसमें अवाम को फांसने की कोशिश की जा रही है। तो वो पहले तो जी वो मैंने कहा था लामा के ये उस कौम के को ये इस तरह की पेशीन गोइयाँ सुनाई जा रही हैं और इल्म नजूम के माहिर सुना रहे हैं, जिस कौम का जो कौमी शायर है वो लामा इकबाल है और वो कहता है कि सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराही अफलाक में है ख़वार ज़ुबूं। तो ये उन सितारों से हाल पूछते हैं जिनके मतलब अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि ये क्या इंसान के मुकद्दर का उसके मुस्तकबिल का पता दे सकते हैं, ये तो बेचारे खुद इस्लाम उतना ही कायनात के सिलसिले में खला में स्पेस में वो एक मदार में घूमे जा रहे हैं और वो बेचारे इतने मजबूर हैं कि वो उस मदार से रत्ती भर भी इधर उधर नहीं हो सकते। अगर हो जाएंगे तो सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स होने लग पड़ता है। तो ये उन सितारों की हरकतों से, उन सितारों की चालों से ये कौम के मुस्तकबिल की खबरें बताते हैं। तो वो जो मैंने वो माहिर नजूम की वो जो पेशीन गोई पड़ी 11 से 12 साल, जो मैंने कहा पहला नुक्ता इसका, ये यानी जो भी नया सिस्टम आएगा उसमें जो भी हुकूमत या इक्तदार में आएगा वो 11-12 साल कहीं भी नहीं जाएगा जनाब, वो 11-12 साल अवाम के सर पे मुसल्लत रहेगा। और पेशीन गोई का ये हिस्सा कोई नया नहीं है, जब पाकिस्तान में

0: पहला मार्शल लॉ लगा था 1958 का, तो उससे पहले जनाब यही बात जनरल अयूब साहब अपनी किताब में बयान फरमाते हैं जी। वो कई मई 1958 में वो बेगम राना लियाकत अली ख़ान से हेग में मिली, जहाँ पे वो सफ़ीर थी। तो वो बताते हैं जी, बेगम राना लियाकत अली ख़ान बहुत परेशान थी पाकिस्तान के सियासी हालात से, तो उनका ख़्याल था कि जनाब यहाँ पे कोई ना मज़बूत जो है ना वो टाइट रूल 10 साल के लिए हो तो इस मुल्क के सियासी मसाइल हल हो सकते हैं। देखा, यहाँ भी 10 साल के लिए कोई नया निज़ाम लाने की बात की जा रही है, और जब अयूब खान साहब इक्तदार में सियासत में दखील होने के लिए पर तोड़ रहे थे, तो वो इस तरह के हवाले मुख्तलिफ बंदों के से के हवाले से सामने ला रहे थे कि बेगम राना लियाकत अली ख़ान का ख्याल है, वो जिनके खामन ने कायदे आज़म के साथ पाकिस्तान के क़याम की जमहूरी जद्दोजहद में हिस्सा लिया, उनकी बेगम फरमा रही हैं जनरल अयूब साहब को कि पाकिस्तान में 10 साल के लिए एक टाइट रूल होना चाहिए। ये बात उन्होंने मई 1958 में की, जिसको जनरल अयूब कोट कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि बेगम राना लियाकत अली ख़ान साहिबा ने ये बात कही थी भी या नहीं कही थी, तो ये बात उन्होंने मई 1958 में की, और फिर अक्टूबर 1958 में यानी पाँच छः माह बाद मार्शल लॉ लग गया। कितने खलूस दिल से जनरल अयूब खान साहब ने बेगम राना लियाकत अली ख़ान की बात पे अमल किया जी। वाकई यहाँ एक 10 साल के लिए टाइट निज़ाम रखेंगे, और वह रखा गया। फिर 1958 से 1968 तक जनरल अयूब साहब भी इक्तदार में रहे। ये तो हो गया जी वो पहला बात। आपको बताने के पहलू यह है कि ये कोई नई बात नहीं है जनाब, एक नया निज़ाम जो 10 साल के लिए रहे, इस फ्रेम में इस कौम को पहले भी मुब्तला किया जा चुका है, और उसका नतीजा भी फिर आपके सामने है 1968 और फिर 1971 में उसके नतीजे सामने आ गए। चलो पाकिस्तान दो लख्त हो गया, ये टाइट रूल का नतीजा निकला था। एक बात, उसके बाद कहते हैं जी हम इस मुल्क में जमहूरियत अफोर्ड नहीं कर सकते, ये भी बड़ा पुराना राग है, और इस राग के अलापने वाले भी सिविलियन और फौजी शराफिया थे, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब खान। उनका ख्याल था कि हम यहाँ, हमारा मिजाज ही नहीं है जमहूरियत वाला, यहाँ पे कंट्रोल्ड जमहूरियत होनी चाहिए, और यकीन करें इस मुल्क में हमेशा कंट्रोल्ड जमहूरियत रही है। कंट्रोल्ड जमहूरियत का मतलब पता है क्या है? सामने तो जमहूरियत हो, अवाम वोट भी डालने जाएँ, लेकिन उन इंतहाबात का नतीजा अवाम की मर्ज़ी का नहीं, वो हमारी मर्ज़ी का निकलेगा भाजी। ये है कंट्रोल जमहूरियत की तारीफ जो मैं करता हूँ, कि जमहूरियत नज़र तो आ रही है लेकिन वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं है, उसके जो धागे हैं वो पीछे से किसी और के हाथ में। ये बात जो कह रही है जी, हम जमहूरियत अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या आप समझते हैं कि वो इल्मे नुजूम की माहिर खातून जो हैं, वो इतनी उनकी सियासत पे गहरी नज़र है कि वो इतना बड़ा और ख़तरनाक पेशीन कोई कर सकती है? इस तरह की बातें कोई करता नहीं, उनसे करवाई जाती हैं अवाम की जहन साजी के लिए, कि जब ये वाक़या हो तो अवाम कहें हाँ बातें तो हो रही थी, ये होना है, वो हो गया। अच्छा, अगली बात देखें जी, जिन मुल्कों में बादशाह था क्या इन मुल्कों ने तरक्की नहीं की? अब आप ज़रा जनाब सोचे कि किन किन मुल्कों में बादशाह थे हैं। मिडल ईस्ट सारे बादशाह बैठे हुए हैं, और नए निज़ाम के नाम पे हमारे मुल्क में जो इक्तदार में आएंगे, अगर आ गए तो इन्होंने वो कर दिया, तो उनके सबसे ज़्यादा अच्छे तलकात किन से हैं? मिडल ईस्ट से, बादशाहों से। यानी एक तरफ इस बयान से ये भी अरब के बादशाहों को पैगाम दे दिया गया कि हमारे यहाँ अगर कोई नया निज़ाम आए तो उससे आपको कोई ख़तरा नहीं जनाब, होंगे हम भी बादशाह ही लेकिन जमहूरियत का थोड़ा सा लबादा उड़े हुए, वही कंट्रोल जमहूरियत वाली बात। और उस नए निज़ाम में होगा क्या? چیز کی پاسبلٹی ہے؟ کوئی صدارتی، ظاہر ہے پارلیمانی سے صدارتی نظام لے آئیں گے، یہی کریں گے، اور کوئی تیسرا راستہ تو نہیں ہے نا. تو جس طرح وہ 1958 میں ایک ٹائٹ رول آیا جس میں پہلے مارشل لا لگا اور پھر اگلے 5 سال جنرل ایوب صاحب صدر بنے رہے بلا شرکت غیرے، آئین بھی بنایا جو کمروں میں بیٹھ کے بنا، عوام کی کسی منتخب پارلیمنٹ نے نہیں بنایا، اور اس آئین میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جو اختیارات کا منبع تھا وہ صدر تھا، اور صدر جنرل ایوب خود تھے. اس سے پہلے 1956 عیسوی کا آئین بنا تھا. 1956 عیسوی کا آئین ملک کی قانون ساز اسمبلی نے بنوایا تھا، عوام کے نمائندوں نے بنایا تھا. لیکن اس آئین کے متعلق پہلے بھی کئی بار متا چکے ہیں کہ یہ پتہ جنرل ایوب صاحب کا کیا خیال تھا؟ جنرل ایوب صاحب کا خیال تھا کہ یہ آئین ورک ہی نہیں کر سکتا. جناب کیوں نہیں ورک کر سکتا؟ کہ اس میں جو اختیارات ہیں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے. جمہوریت میں یہی تو ہوتا ہے کہ کسی کو مختار کل نہیں بنایا جاتا کہ اس میں آمریت نہ آ جائے، لہٰذا اختیار کو ڈیوائیڈ کر دو. لہٰذا اس وجہ سے جنرل ایوب صاحب کا خیال تھا کہ یہ آئین قابل عمل ہی نہیں ہے، یہ چوچو کا مربع ہے. اور اسی آئین کے تحت میجر جنرل سکندر مرزا جو پاکستان کے پہلے صدر بنے تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ گورنر جنرل تھے تو آئین بن گیا تو اس کے تحت صدر منتخب ہونا، تو وہ اس آئین کے تحت صدر بنے تھے، تو ان کا اس آئین کے متعلق، یہ قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ میں پڑھ لیں جناب، وہ قدرت اللہ کہتے ہیں میں شوق میں آ گیا جب میجر جنرل سکندر مرزا نے کہا یہ آئین کوڑے کے ڈبے میں پھینک دینے کے لائق ہے. یعنی جس آئین کے تحت وہ خود صدر بنا، اس کی نظر میں وہ آئین کوڑے کے ڈبے میں ڈال دینا چاہیے. تو پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری میجر جنرل سکندر مرزا نے، پھر اس کا نتیجہ دیکھ لیا. بڑے رسوا ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے، آدھی رات کو سوئے ہوئے کو اٹھا کر انہوں نے کہا نکلو بھائی. اور وہ واقعہ میں پہلے بھی یہ یقین کریں یہ واقعات بار بار رپیٹ کرنے والے ہیں تاکہ آپ کی یاداشت میں یہ واقعات نقش ہو جائیں، آپ کو سمجھ آئے کہ وہ کوئٹہ کے ایئرپورٹ پہ ایئر مارشل اصغر خان، اس وقت شاید کیپٹن تھے یا فضائیہ میں ان کا رینک کیا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ میں میجر جنرل سکندر مرزا کو خدا حافظ کہنے گیا، تو وہاں کا منظر دیکھ کے میں شاک حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ میجر جنرل سکندر مرزا صوفے پہ اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے کیپٹن یا میجر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کیپٹن یا میجر نے اس ٹیبل پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں جس صوفے پہ میجر جنرل سکندر مرزا اور ان کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے. کیسی ذلت ہے یہ کہ وہ اسے بتا رہے ہیں کہ تمہاری اوقات یہ ہے، ہم تمہارے سامنے میز پہ ٹانگے رکھ کے بیٹھے گے، بے شک تم اس ملک کے صدر رہے ہو یا گورنر جنرل رہے ہو. اس وقت ایئر مارشل اصغر خان کہتے ہیں میں شوق رہ گیا کہ یہ ہماری سیاست میں کس طرح کے رویے نفوذ کر رہے ہیں. بھارت وہ بات جی، وہ جی یہ ہم اس ملک میں جمہوریت افورڈ نہیں کر سکتے، اس ملک میں جی ترقی تو بادشاہ سے بھی ہوتی ہے. یہ جو مڈل ایسٹ میں ترقی ہوئی ہے یہ بادشاہوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وہاں سے نکلنے والے تیل کی وجہ سے ہے. وہاں کوئی ایسا عظیم الشان انہوں نے کوئی نظام متعارف نہیں کروا دیا تھا جو مڈل ایسٹ کی ترقی کا باعث بن رہا ہے. یہ مڈل ایسٹ سے نکلنے والا سونا جو ہے تیل، اس کی وجہ سے ہے جناب یہ ترقی. یہ ترقی کوئی فکری ترقی نہیں ہے، یہ مادی ترقی ہے صرف. जिन माशरों में इंसान के सोच पे पहरे बैठा दिए जाएं, वो ज़रा से टस से मस नहीं इधर से उधर से हो सके, वहाँ जो भी तरक्की आपको नज़र आ रही होती है वो सारी मसनूई होती है। लिहाजा ये बादशाह को भी वो फिर अगली बात सोचें, वो जो मसव्वर पाकिस्तान है लामा इकबाल, जो मुसलमानों को उम्मत मुसलमा को ये तंबीह कर रहे थे कि अपने बादशाहों से खबरदार और चुकन्ने रहना। एक इल्म नजूम का माहिर बता रही थी तरक्की तो बादशाहतों में भी हो जाती है, लिहाजा वो लामा इकबाल की सोच और फिक्र पे लकीर फेर रही है एक माहिर इल्म नजूम जिसका कोई सियासी फहम नहीं होगा। अब आखिरी बात जो सबसे बड़ी है, ख़तरनाक है इसमें, जो उन्होंने कही है जी कि अल्लाह के हुक्म से इस मुल्क में सिस्टम तब्दील होना है और इसी ने मुल्क को बदलना है। अब देखें अपने जो मजमूम मज़ाइम हैं उनको मज़हब का लबादा ओढ़ा जा रहा है, यानी अगर वो सब कुछ हो गया तो जनाब वो हम नहीं कर रही, ये तो अल्लाह की तरफ से हो रहा सब कुछ। यानी अगर किसी के जहन में कोई सवाल कोई इतराज़ उठे भी तो क्योंकि हमारा माशा इंतहाई मजहबी है उसे ये कहकर चुप करा दिया जाए ये अल्लाह की मर्जी है, तो अगर तुम एतराज़ उठा रहे हो तो दरअसल तुम हमारे कामों पे नहीं तुम अल्लाह की मर्जी पे एतराज़ उठा रहे हो। ये आखिरी वाला नुक्ता सबसे ख़तरनाक है जनाब। तो ये एक माहिर इल्म नजूम कह रही है, तो वो जो मैंने लामा का एक शेर आपको सुनाया, शाह क्या सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा, वो खुद फराही अफलाक में है ख्वार व ज़बूं। तो फिर लामा इकबाल इन्हीं सितारा जो इल्म नजूम के माहिर है यही जो सितारों के हरकात व सकनात से इंसानों की दुनिया के मामलात का हल निकालते हैं, तो लामा इकबाल ने फिर एक और जगह कहा था कि तेरे मकाम को अंजम शुनास किया जाने, इंसान से कह रहे हैं कि तेरे मकाम को अंजम शनास किया जाने कि खाके जिंदा है तू ताबाए सितारा नहीं, कि खाके जिंदा है तू ताबाए सितारा नहीं, कि तू ताबे नहीं है सितारों के, तू तो जिंदा। एक और नुक्ते पे गौर कीजिए, जिंदा जिंदा इंसान की निशानी ये होती है कि वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो अपने इख्तियार से अपने इरादे से अपने अमाल का इंतहाब करता है कि मैंने ये काम करना है या मैंने ये काम नहीं करना। तो अगर आपको ये आज़ादी हासिल नहीं है तो फिर आप जिंदा नहीं हैं जनाब, क्योंकि किसकी मर्जी और इरादा नहीं होता, मुर्दा इंसान की कोई मर्जी और इरादा नहीं होता जनाब, वो मैयत पड़ी है, उठा के जो करना है कर लो, दफनाना है दफना दो, नजरे आतिश करना है तो मैयत को चिता में जला दो, कुछ भी कर लो, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अब आपके चार बंदों के कंधों पर हूँ। इसमें आपने दूसरा नुक्ता समझा कि अगर आप अपनी जिंदगियों के फैसले सितारों की मूवमेंट से कर रहे हैं तो फिर आप जिंदा नहीं है जनाब, वो सितारे जो मर्जी के मालिक ही नहीं हैं, खलाओं में खज्जल ख्वार हो रहे हैं, आप उनसे अपने लिए गाइडेंस मांग रहे हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए कोई पस्ती का मकाम हो सकता है कि आप बाइरादा बाइख्तियार और रहनुमाई किन से हासिल कर रहे हैं जिनका कोई इरादा इख्तियार नहीं। वो लामा ने फिर एक वो और जगह कहा था ना, तकदीर के हैं पाबंद नबातात और जमादात, मोमिन फ़कत अहकाम अलाही का है पाबंद। ये जो कायनात में ये नबातात और जमादात है ना, ये एक ख़ास प्रोग्राम के तहत चल रहे हैं और ये उससे रू गर्दानी नहीं कर सकते, लेकिन इंसान को ये इख्तियार की दिया गया है मोमिन कि तू जो रास्ता इख्तियार करना चाहता है कर ले। लेकिन इंसान की इस आज़ादी में जबर का सिर्फ एक पहलू है, जबर का पहलू ये है कि वो अपने अमाल के चुनाव में तो आज़ाद है लेकिन अपने अमाल के नतीजे अपनी मर्जी से मरतब नहीं कर सकता, مثلا آپ اس بات میں تو آزاد ہیں کہ آپ کے سامنے زہر پڑا ہے اور دودھ کا گلاس پڑا ہے, تو آپ اٹھا کے زہر کو منہ سے لگا لیں یا دودھ پی لیں. تو آپ نے زہر اٹھا لیا تو اس کا نتیجہ اب آپ نہیں بدل سکو گے, اس کا نتیجہ لازمی موت کی صورت میں نکلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے پئیں تو زہر, نتیجہ دودھ کا نکلے. یہ جبر ہے انسان. آزادی یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں, اپنے اعمال کا چناؤ خود کر سکتے ہیں, لیکن ان کے نتائج اپنی مرضی کے نہیں نکال سکتے. یہ ہے انسان جناب. لیکن پھر یہ سوچیں, جب ہمارے دین کی تعلیمات اتنی اعلیٰ و عرفا ہیں اور انسان کو بار بار یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ نہیں, ہم نے تمہیں آزاد و خود مختار پیدا کیے, تو پھر وہ اس طرح کیوں بن جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی, وہ علامہ پھر کہتے ہیں, تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز, تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر, تھا جو نا خوب وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ مسلمان جو اپنے ارادوں سے اپنے عزائم سے دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیتے تھے, آج ان کی حالت یہ ہے, اور جن کے ارادے اور خدا کے ارادے ایک سے ہوا کرتے تھے, خدا کی مرضی خدا کی تقدیر ان کے کاموں سے جھلکتی تھی. آج ان کا کیا حال ہو گیا ہے؟ وہ جو چیز خوب ہوا کرتی تھی کہ ان کے ارادے اور خدا کی تقدیر ایک ہوتی تھی, اب وہ ناخوب کچھ اس طرح ہو گئے ہیں کہ اب انہوں نے اپنی ناکامیوں کو, اپنے فیلئرز کو, اپنی بدعمالیوں کے نتائج کو تقدیر کا نام دینا شروع کر دیا, اور وہ اللہ کے سے جوڑ دیتے ہیں, جی یہ اللہ کی مرضی ہے. یعنی وہ جو اعمال اور ان کے نتائج پہ یقین رکھتے تھے کہ ہم یہ عمل کریں گے اور یہ نتیجہ حاصل کر کے رہیں گے, اب ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے جو بھی ان کی زندگیوں کے حالات ہیں وہ اسے بھی اللہ کی مرضی قرار دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری شامت اعمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے. وہی شیطان والا کام, ابلیس والا, اللہ تعالیٰ کو کہ تیری مرضی میں نہیں تھا میں سجدہ کرتا, اگر تیری مرضی میں ہوتا تو میں نے سجدہ کر دینا تھا. یہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سر پہ تھوپ دی, اپنی غلطی نہیں مانی. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلامی میں ہوتا ہے اس طرح, تو اب آپ کہیں گے جناب ہم کیسے غلام ہو گئے, ہم تو ایک آزاد و خود مختار ریاست پاکستان کے باسی ہیں, کون کہتا ہے ہم غلام ہیں؟ ایک دم ہماری رگے غیرت پھڑک اٹھے گی. تو جناب غلامی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی غیر ہی آپ پہ حکمران ہو, کوئی سفید چمڑی والے آپ پہ حکمران ہو تو آپ غلام ہیں. آپ اپنے ہم وطن اور ہم قوم حکمرانوں کے بھی غلام ہو جاتے ہیں, اور اس غلامی کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ اگر کسی معاشرے میں کسی کے زیر اقتدار آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں, آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں, تو آپ خود مختار نہیں کہلا سکتے. اگر آپ کی سوچ کو, آپ کے سوال کو وطن دشمنی کا لبادہ پہنا دیا جاتا ہے تو آپ ایک دم چکنے ہو جائیں کہ آپ ایسے لوگوں کی رعایا ہیں جو آپ کو اپنا محکوم اور محتاج رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ جو علامہ نے کہا نا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر, تو جب آپ ایک طویل عرصے تک اس طرح کی کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں نا, جہاں آپ کو جبر کے تحت زندگی گزارنا پڑے, تو آہستہ آہستہ آپ اب یہ تو نہیں کہتے کہ یہ حالات اس لیے نہیں بدل رہے کہ ہم کوشش نہیں کر رہے, ہم جرت نہیں کر رہے, آپ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہماری تقدیر ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہے. تو اللہ کی طرف سے بھی اگر یہ آزمائش ہے, اگر وہ ہمارا ٹیسٹ ہے, تو اس آزمائش سے ہم باہر کس طرح نکلیں گے؟ उसके लिए वो अल्लाह ताला ने हमें जो इरादा और मर्जी दी हुई है वो के अल्लामा इकबाल फिर अब्स है शिकवाए तकदीर यजदा, ये हमारे अमूमी रवैयों की तरफ इशारा है कि आप कहो अल्लाह की तकदीर अल्लाह की मर्जी यही है। उन्होंने कहा ना, ये शिकवे गिले मत करो, अल्लाह के माथे मत अल्लाह की झोली में मत डालो, अल्लाह के दामन को दागदार मत करो। अब्स है शिकवाए तकदीर यजदा, तो खुद तकदीर यजदा क्यों नहीं है? तो अगर अल्लाह की तकदीर अल्लाह के कानून की वजह से तेरी ज़िंदगी में तेरे अमाल की वजह से एक मुश्किल एक मुसीबत आ रही है तो फिर फौरन जान के इस मुश्किल और मुसीबत से निकलने के लिए अल्लाह ने कोई राह भी बनाई होगी, वो अल्लाह का दूसरा कानून है दूसरी तकदीर है, तो मैं उससे रुजू कर लेता हूँ तो मैं इस मुश्किल से निकल जाऊँगा, ये है इस शेर का मतलब। तो खुद तकदीर है यजदा क्यों नहीं है कि अगर अल्लाह कि एक तकदीर ये है कि तुम्हारे गलत अमाल की वजह से तुम आजमाइशों में मुसीबतों में पड़ जाओगे, तो अल्लाह की दूसरी तकदीर ये है कि तू उन गलत अमाल को तर्क कर दे और सही अमाल इख्तियार कर ले, तेरी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। लेकिन जनाब वही बात कि अगर आप सोचेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे या फिर आपको इसकी इजाज़त नहीं है, तो आप ये नुक्ता समझ लें कि आप आज़ाद और ख़ुद मुख्तार नहीं हैं। अगर आपने किसी भी महफिल में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को टेस्ट करना हो तो सवाल करके देखें। अगर तो आप सवाल करने की जुर्रत नहीं रखते तो जनाब यकीन करें आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप नाफक हैं, समझ ये रहे हैं कि हम आज़ाद हैं जबकि अंदर से आपको पता है कि मुझे इतनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी नहीं, मैं सवाल कर सकूँ तो मैं कहाँ का आज़ाद कहाँ का ख़ुद मुख्तार। तो इस 79th योम आज़ादी के मौके पर इस पैगाम को पल्ले बांधे। आपने जब कभी कहीं अपनी आज़ादी को टेस्ट करना है कि मैं कितना आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हूँ, तो आप ये अमल करके देखिएगा। आपके सामने अगर कोई सूरत हाल है उस पर सोचें और सवाल उठाएं और फिर देखें कि उसके जवाब में रद्द अमल क्या आता है। क्या आपको शटअप कॉल दी जाती है? तो अगर आपको जो शख्स शटअप कॉल दे रहा है वो आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को महदूद कर रहा है जनाब, और फिर वो जो कोई भी है सबसे पहले आपको जद्दोजहद उसके ख़िलाफ़ करनी होगी। और जिस दिन आप ये करके कामयाब हो जाएंगे फिर आप हकीकी मानों में आज़ाद हो जाएंगे, वरना जुग्राफियाई हदूद रखते हुए भी एक मुल्क की सूरत में अगर आप अपने फ़ैसलों में आज़ाद नहीं हैं तो आप ख़ुद मुख्तार और आज़ाद होने का दावा नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, और इसके बाद जो हम अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे वो भी इससे रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा हट के, यकीन करिए वो है तो वो थ्योरी जो है उसको डिस्कस तो कारोबारी और जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उनकी तरक्की और वो किस तरह मज़ीद डेवलप से डेवलप होती चली जाती हैं उसके मतलब है, लेकिन अगर आप उनमें बयान किए गए असूलों को इंसान और कौमों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे उनका इतलाक करेंगे तो यकीन करें वो पढ़ते हुए मेरे जहन में अपनी सारी सूरत हाल आ रही थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान की अवाम की। तो उसको आखिर पे मैं थोड़ा सा वाइंड अप ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर यकीन करें आप उन बातों पे जहन लड़ाएंगे आपकी जहानत और यही है कि आप एक बात सुने तो उस बात को आप मुख्तलिफ सूरत हाल पे उन को इम्प्लीमेंट करें, उनका इतलाक करें और देखें कि नतीजा क्या निकलता है। हालाँ हमें स्कूलों में कभी ये बातें साइंस में सिखाई भी जाती हैं, मसलन कोई कानून पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है मसालों से वादा करें, तो बदकिस्मती से हम वो रट्टे ही लगाए होते हैं इसलिए उसमें वो असूल हम कभी नहीं सीखते कि यहाँ से निकल के अभी हमने ये अगर हम मसलन आप कह दे कि हम आज़ाद हैं, मैं आपको सवाल दे दिया जाए कि हम आज़ाद हैं मसालों से वाजा करें कि आज़ाद हैं तो किस तरह आज़ाद हैं, तो देखिए आपकी सोचें कहाँ से कहाँ जाएंगी। तो यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद हम उसकी तरफ अपने उस मौजू की तरफ आते हैं।
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन फंक्शन देखो। हमारी वेबसाइट है

0: हजारों दिलों की धड़कन। आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 अगस्त पाकिस्तान में इतवार की सुबह आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 267। आज की अहम तरीन खबरों में तीन बहुत ही अहम खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रखनी है कि किस तरीके से इमरान खान साहब को पहले शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल पर भेजने के लिए राजी हुए, फिर आखिरी लम्हे कौन डर गया, किसने किरदार अदा किया, कौन जहाज पर बैठकर सुबह ही सुबह आकर किसी अहम शख्सियत से मिला, सारे फैसले जो हैं वो वापस करवाए गए, आईएसआई के अंदर से किसने किरदार अदा किया, मिनिस्ट्रीज के अंदर कौन क्या किरदार अदा कर रहा था, क्यों आखिरी लम्हे पर पिम्स लाया गया और फिर पिम्स से उन्हें वापस ले जाकर जेल में दोबारा दाखिल कर दिया गया या जेल में बंद किया गया, ये सब कुछ क्या चल रहा था, इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी इस्लामाबाद से मुतबिर जर्नलिस्टों ने हम तक पहुंचाई है। जो उनके मुताबिक वो इस्लामाबाद में बैठकर खुद ब्रेक नहीं कर सकते, उन्होंने ये खबर हमें दी है। अच्छे दिन आएंगे तो उनका नाम और उनका जो क्रेडिट बनता है स्टोरी के लिए वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर बहुत ही अहम है कि रावलपिंडी के अंदर अगले 6 महीने के लिए फौज को तैनात कर दिया गया, मतलब फौज मंगवा ली गई। दूसरे लफ्जों में रावलपिंडी फौज के सुपुर्द कर दिया गया। इसके पीछे किसका डर है, कौन क्या डर रहा है या कोई बड़ा बड़ी शरारत प्लान कर रहा है, ये सब कुछ क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। फिर 27 सितंबर को तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है, तो 25 सितंबर सिर्फ 2 दिन पहले किसान इत्तेहाद ने भी अपना लॉन्ग मार्च जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है। अब सिर्फ 2 दिन पहले पीटीआई से अगर किसान इत्तेहाद का लॉन्ग मार्च भी हो रहा है तो इसकी जाहिर है बड़ी संगीन रेमिफिकेशंस होंगी। ये सब कुछ क्या हो रहा है, और भी बहुत सारी अहम खबरें हैं आज के इस व्लॉग में, लेकिन सबसे पहले मैं जरा रावलपिंडी वाली खबर पर आ जाऊं और फिर आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर रखते हैं कि ये शिफा इंटरनेशनल वाला सारा जो मामला था ये किस तरीके से आप ये कहिए कि तब्दील किया गया, इसके अंदर कौन कौन से किरदार थे, इसके ऊपर से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले तो रावलपिंडी को अगले 6 महीने के लिए फौज के सुपुर्द कर दिया गया, वहां पर फौज बुलवा ली गई। आज मेरी कम से कम 2 सीनियर तरीन फौजी अफसरान से बात हुई। जब मैं सीनियर तरीन कह रहा हूं तो दोनों जनरल लेवल के रिटायर्ड फौजी अफसरान, और जिन्होंने रावलपिंडी में, जाहिर है तकरीबन सभी सीनियर अफसरान ने रावलपिंडी में किसी ना किसी तरीके से सर्व किया होता है क्योंकि वहां पर जीएचक्यू है, तो दोनों ने बहरहाल रावलपिंडी के अंदर सर्व कर रखा है। दोनों का ओपिनियन यह था कि रावलपिंडी में हिस्टोरिकली आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां तो पहले ही फौजी फौज है, जीएचक्यू भी है और उससे मुलहका और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो शहर तो वैसे ही फौज के हवाले है। वो कहते हैं कि उस शहर को दोबारा से फौज के हवाले करना, मतलब ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन निकालकर फौज को वहां पर तलब कर लेना, मतलब शहर को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से निकाल के फौजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ऐसे ही समझ लीजिए जैसे एक केस नॉर्मल कोर्ट में चल रहा हो तो उसे आप मिलिट्री कोर्ट में भिजवा दें, या आप समझिए कि कहीं पर मार्शाला लगा दें, तो एक किस्म का आज से रावलपिंडी के ऊपर मार्शाला लग गया है। बाकी मुल्क के नस्बत रावलपिंडी के ऊपर बिल्कुल अब डिफरेंट किस्म के कवानीन होंगे। वैसे तो बलूचिस्तान के भी बहुत सारे इलाकों के अंदर फौज ही फौज है या फौज का ही नज़्मो नस्क है, जितना भी रह गया अब जो हालात बन गए हैं, लेकिन वहां पर भी इस तरीके से उस इलाके को फौज के हवाले नहीं किया गया। रावलपिंडी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शायद वाहिद अदारा इलाका होगा, शायद कोई इक्का दुक्का और भी हो, बाद में लोग कहेंगे ये गलत बयानी कर रहे थे, लेकिन जो बड़े और आप ये कहिए कि रेनाउंड स्टेशंस हैं उनमें रावलपिंडी वाहिद अकलौता अब एक शहर होगा जो फौज के हवाले किया गया, मतलब जिसमें मार्शल लॉ लगा दी गई है, अब वो सिविलियन गवर्नमेंट के नीचे नहीं रहा। इस पर शाहीन सहबाई साहब ने बहुत ही उमदा तबसरा किया है। उनका कहना यह है कि यह असल में इसलिए फौज के हवाले किया गया है कि आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा डर है। उनका कहना यह है कि आसिम मुनीर जो है वो बहुत ही वाजबी किस्म के फौजी थे, मतलब कि एक तो वो पहले एयरमैन भर्ती हुए एयरफोर्स के अंदर, फिर वो ओटीएस के जरिए फौज के अंदर आए, फिर फौज के अंदर आने पर भी वो बहुत ही एवरेज उनकी परफॉर्मेंस थी और वो किसी भी तरह से ऊपर आते गए, हालांकि वो कहते हैं कि वॉर कोर्स में भी अमूमी तौर पर जितने भी लेफ्टिनेंट जनरल्स होते हैं उन्होंने या यूके से अपना वॉर कोर्स किया होता है या उन्होंने अमरीका से अपना वॉर कोर्स किया होता है। शाहीन सिपाही साहब के मुताबिक ये इतने नालायक थे कि इन्हें ना यूके में एडमिशन मिला ना ही इन्हें अमेरिका में एडमिशन मिला, जिसकी वजह से मजबूरन इन्होंने जाकर मलेशिया से वॉर कोर्स किया उनके मुताबिक, और जिस वजह से जो दूसरे हमपल्ला इनके साथी थे उनके ये बराबर जाहिर है अपने आप को नहीं समझते थे, तो बहुत सारे इनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस हैं और फिर ओटीएस से भी आए थे और अब उन कॉम्प्लेक्सेस को निकाल रहे हैं और सभी अपनी तरह के मीन अपने से ज्यादा जो कोई इंटेलिजेंट है उसको प्रमोट नहीं कर रहे। उनका कहना है कि अभी चंद हफ्तों में इन्होंने मिलिट्री के अंदर बहुत सारी प्रमोशंस करनी है, 10-12 तो मेरे ख्याल लेफ्टिनेंट जनरल्स बनाने हैं, तो उन्होंने अपनी तरह के या अपने से कम जो इल्म रखने वाले या अहलियत रखने वाले लोगों को प्रमोट करना है और उन्हें डर है कि कहीं फौज के अंदर से उनके खिलाफ कोई रिवॉल्ट ना हो जाए। ये शाहीन सिपाही साहब का तज्जिया है कि इस वजह से उन्होंने जो उनके दिल के अंदर खौफ है, जो उन्होंने गलत काम कर छोड़े हैं अभी तक, इस वजह से उन्होंने रावलपिंडी को फौज के हवाले कर दिया है। लेकिन बहरहाल जो भी वजह है, जो भी वजह, कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल करना है इसलिए रावलपिंडी को फौज के हवाले किया। मैं ये नहीं समझता, क्योंकि इस वक्त भी इमरान खान साहब तो मिलिट्री के ही कब्जे में हैं, मतलब उनको तो फौजी जनरल्स ने ही अगवा कर रखा है, तो उनको मिलिट्री ट्रायल करने से किसने रोक रखा है, वो उन्हीं के पास है, तो उन्हीं के पास है इमरान खान साहब, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए पूरे रावलपिंडी को इन्होंने सुपुर्द करना है। अब यह भी हो सकता है कि रावलपिंडी के अंदर मारधाड़ ज्यादा करनी हो, माल पानी वहां बहुत है, तो उन्होंने कहा कि एक ही दफा काम निबेड़ो, इसको भी पूरे रावलपिंडी को ही कैंट डिक्लेयर कर दो और इसे फौज के हवाले कर दो और फिर हम यहां पर जो मर्जी करें। तो बहरहाल यह सूरतेहाल आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जिसके ऊपर मुनीब फारूक, जो कि आपको पता है कि अर्दली हैं बेचारे, उन्होंने इस पर तबसरा किया है कि इसको सीरियस ना लिया जाए, ये एक मामूल की मूवमेंट है। अब जाहिर है सभी को पता है कि ये ऐसे ही बकवास तज्जिया उन्होंने किया है, ये मामूल की मूवमेंट नहीं है। 6 महीने के लिए रावलपिंडी जैसे शहर को, दारुल हुकूमत के साथ जुड़े हुए शहर को फौज के हवाले करना, जाहिर है ये मामूल की मूवमेंट नहीं है। तो कुछ लोग ये भी तज्जिया कर रहे हैं कि हो सकता है दोबारा से ईरान वगैरह का जो एग्रीमेंट है वो कहीं यहां ना होना हो, इसलिए हवाले ना किया गया। वो भी बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इस्लामाबाद को भी हवाले किया जाता। तो बहरहाल ये बहुत ही इसके दूरस नतीजे हो सकते हैं। आपको याद करना होगा फरवरी के महीने में हमने आपको एक खबर दी थी कि रावलपिंडी, गवादर, कराची और कुछ इलाकों को, कोयटा का भी नाम लिया था, कि इनके बारे में सोचा जा रहा है कि इन्हें वफाक का हिस्सा बना लें। तो उस चीज को भी सामने रखिए, अभी कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जाहिर है ये कोई बड़ी उमदा हरकत नहीं कि आसिम मुनीर साहब ने फौज के हवाले रावलपिंडी को करके, तो ये पहली बात है। दूसरी तरफ खुजदार में वकार खान आज हमारे सामने वीडियो रख रहे हैं कि खुजदार में BLA ने घात लगाकर फौजी गाड़ी पर हमला कर दिया, गाड़ी में मौजूद तमाम फौजी शहीद हो गए, उनकी लाशें सड़क के किनारे फेंक दी गई और उनके मुताबिक जो है वो जाहिर है पूरे पाकिस्तान के लिए ही ये कोई अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन जाहिर है वो सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ रावलपिंडी की सिक्योरिटी जो है वो फौज ने संभाल ली है और दूसरी तरफ जो बलूचिस्तान की सिक्योरिटी है वो BLA ने संभाल ली है, और जो आपने देख ही लिया कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके हैं वहां या तो जो अमन कमेटी है, मतलब पुलिस ने अमन कमेटी बनाई है और वो कहते हैं कि यहां फौज नहीं रहेगी, हम इसको सिर्फ कंट्रोल करेंगे, उनके मुताबिक जब फौज वहां पर आ जाती है तो दहशतगर्दी बढ़ जाती है, पुलिस वालों को कत्ल करना शुरू कर दिया जाता है और वो इनडायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें फौजी अफसरान शामिल हैं उनके यहां दहशतगर्दी करवाने में। तो वहां जो दहशतगर्द हैं कुछ इलाके उन्होंने संभाले हुए हैं, जाहिर है बॉर्डर से के करीब बहुत सारे इलाके उन्होंने नो गो एरिया बनाए हुए हैं, वहां की सिक्योरिटी TTP ने संभाली हुई है, जो कुछ सेटल्ड इलाके हैं वहां पर पुलिस अमन कमेटी ने फौज को कहा है कि वहां से चले जाइए और उन्होंने उसकी सिक्योरिटी संभाली हुई है। बलूचिस्तान में कई इलाकों में BLA ने नो गो एरियाज बना के उनकी सिक्योरिटी संभाली हुई है और हमारे मोहतरम फील्ड मार्शल साहब ने फौज को कहा है कि आप रावलपिंडी की सिक्योरिटी संभाल लें, माशाल्लाह प्रायोरिटीज क्या हैं ये आप खुद ही देख लीजिए। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जो हमने आपको बताया कि हमारे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है। अच्छा, इस खबर की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब मेरे पास ऐसी खबर होती है कि जो मैंने खुद कंफर्म नहीं की होती तो मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देता हूं, मैं बिल्कुल भी आपको जो खबर मैं कंफर्म ना कर सकूं उसको बिल्कुल सच बना के आपके सामने पेश नहीं करता। یہ جو خبر ہے یہ بہت ہی معتبر دو صحافی ہیں, بہت ہی سینئر صحافی, بہت بہت سینئر صحافی, انہوں نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے. ان سے جب میں نے آپ جیسے ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے کاؤنٹر کوسچن کیے اور ان سے میں نے ان کی منطق پوچھی, ان کے سورس کو تو نہیں ظاہر ہے پوچھا لیکن سورس کی صحت کے بارے میں پوچھا, تو خاصی امپیکٹ فل انفارمیشن تھی ان کے پاس. ایسی انفارمیشن تھی جو بالکل آپ برش اوے نہیں کر سکتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایسی انفارمیشن بھی نہیں کہ جسے میں خود سے ویلیڈیٹ کر سکوں اس وقت. اس لیے بے شک آپ اسے سنی سنائی سمجھیں خبر کو, بے شک آپ یہ کہیں کہ ہیر سے ہے, مجھے کسی نے بتائی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن یہ آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں جو کچھ انفولڈ ہوگا یہ انفارمیشن جب آپ کے پاس ہوگی تو شاید آپ کو مدد ملے گی, اور آنے والے دنوں میں یہ بھی پرکھ ہو جائے گی آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ یہ جو مجھے دو سینئر جرنلسٹوں نے یہ خبر دی ہے یہ کس حد تک درست ہے. ان دونوں سینئر جرنلسٹوں نے مجھے یہ بتایا کہ اصل میں یہ جو بھی بات چیت چل رہی تھی اس میں محسن نقوی صاحب آگے آئے. محسن نقوی صاحب ایک ویلر ڈیلر ہیں, بہت ہی وہ میٹھی زبان میں بات کرتے ہیں, وہ بھلے آپ کو زہر کا ٹیکا لگائیں لیکن ان کی زبان اور الفاظ بہت میٹھے ہیں, اس لیے جو بھی ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ انہی کے سگے ہیں. مثلا گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ہر جگہ محسن نقوی صاحب کی تعریفیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان سے اچھا آدمی کوئی ہے ہی نہیں. ابھی ذرائع یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ویسا ہی ریلیشن شپ ان کا سہیل نقوی کے ساتھ, اپنا سہیل افریدی کے ساتھ بھی ہے. محسن نقوی کا ویسا ہی ریلیشن شپ اس وقت سہیل افریدی صاحب کے ساتھ بھی ہے, یہ جرنلسٹ جو ہیں یہ کلیم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ گوہر خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں. تو ان کے مطابق اب محسن نقوی کیونکہ ایک ویلر ڈیلر ہیں, مطلب کہ وہ اپنے فائدے کو ہمیشہ سب سے پہلے آگے رکھتے ہیں, ایک بزنس مین کی طرح ان کا ذہن چلتا ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کر لی ہے. ان کو لگتا ہے کہ کبھی عمران خان آ گئے تو ان کے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے, اس لیے اب جو زخم انہوں نے لگائے ہیں, جیسے ظاہر ہے جو 26 نومبر کو قتل و غارت ہوئی, جو ضلع شاہ کا قتل ہوا, جو عمران خان کے گھر پر حملہ ہوا, وہ سب وقت لاہور میں تھے وہ, اور بعد میں 26 نومبر کو جب قتل و غارت ہوئی تو وہ اسلام آباد میں انٹیریئر منسٹر تھے, تو ساری قتل و غارت کے اندر تو وہ شامل ہیں. ان کے دونوں جرنلسٹوں کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ اب محسن نقوی ان زخموں پر تھوڑی مرہم رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب وہ اس کی اینڈنگ اچھی کریں, ریلیف دے دیں تھوڑا سا پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, تاکہ ان کے بارے میں ہوسٹیلٹی کم ہو جائے. اس لیے انہوں نے فیلڈ مارشل سے بات کی کہ ہم نے کافی کچھ کر لیا ہے, صدر زرداری تو اب بالکل صوبے بنانے کو تیار نہیں. مثلا آج ہی کی احمد میر صاحب کی خبر ہے, آج ہی کی, کہ صدر زرداری جو ہیں وہ اب ذہنی طور پر ایوان صدر کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے ہیں, یہ آج ہی کی خبر ہے. اور اس خبر کو اگر اس خبر کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو خبر ہے اس میں احمد میر صاحب یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صدر زرداری اگر صدر ہاؤس چھوڑنے کو تیار ہیں, تو دوسرے لفظوں میں احمد میر صاحب اپنا یہ تجزیہ دے رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کسی صورت سندھ میں نئے صوبوں کے حق میں نہیں ہے, وہ کراچی کسی صورت دینا نہیں چاہتے, اور اس کے لیے وہ صدارت بھی چھوڑنے کو تیار ہیں اور سندھ کی گورنمنٹ چھوڑنے کو بھی تیار ہیں. تو اب اگر اس چیز کو جو محسن نقوی صاحب کے بارے میں سٹوری ہمیں دوسرے دو جرنلسٹوں نے دی اس سے ملا کے پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے ضرور کہا ہوگا فیلڈ مارشل صاحب کو, ان جرنلسٹوں کے مطابق تو کہا, کہ آپ مجھے اب پی ٹی آئی کے زخموں پر بھی تھوڑی مرہم رکھنے دیں, ان کو قریب لانے دیں, اور زرداری صاحب تو صوبے بننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں بنانے میں, تو میں پی ٹی آئی کو ساتھ لیتا ہوں, اور پی ٹی آئی جب اس میں ووٹ دے دے گی, 28ویں ترمیم بھی ہوگی, آپ نے صدر بھی بننا ہے, اگر پی ٹی آئی نے آپ کو ووٹ دے دیا تو آپ کی انڈورسمنٹ بھی ہو گئی, جو سارا آپ کے خلاف ایک محاذ تھا, جو لارجر عوام کے اندر آپ کے خلاف ایک غم و غصہ نفرت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی, اور آپ صدر بھی بن جائیں گے, 28ویں ترمیم بھی پاس ہو جائے گی, اور پی ٹی آئی کے زخموں پر مرہم بھی رکھ دی جائے گی. ان کے مطابق اس بات کے اوپر فیلڈ مارشل نے انہیں گو ہیڈ دے دیا, جس پر محسن نقوی صاحب نے ان کے مطابق یہ ساری چیز کی پلاننگ کی, اور انہوں نے عمران خان صاحب کی جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل موومنٹ ہے اس میں انہوں نے ایک پازیٹو کردار ادا کیا کہ ان کو موو کر دیا جائے. دونوں صحافیوں کے مطابق اس چیز کی کانوں کان خبر پی ایم ایل این کو نہیں تھی, उनको लगता था कि पीटीआई जो है वो डेस्परेट होकर हाथ पांव मार रही है, जैसे पहले बहुत दफा मारती रही। पहले भी तो पीटीआई कई दफा हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन बात ना बनी। इस दफा भी ऐसे ही पीटीआई सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा रही है, बात नहीं बननी। रात गए पीएमएलएन को उन सहाफियों के मुताबिक पता चला कि नहीं, पीटीआई की बात अब बन गई है और ये जो बेंच है ये शायद इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मूव करने का फैसला दे दे। जब रात को ये पता चला, और इसमें ये कहा जा रहा है उन सहाफियों के मुताबिक, वो क्लेम करते हैं, गलत भी हो सकता है, कि एहसन भून ने बहुत ही मरकजी किरदार अदा किया और उनके इल्म में था कि ये सब कुछ हो रहा है। जब इनको ये पता चला तो फौरी तौर पर उन्होंने उस शख्सियत को फील्ड मार्शल साहब से डायरेक्ट बात करने की जिम्मेदारी दी, जो समझा जाता है कि फील्ड मार्शल के बहुत करीब है। वो शख्सियत लाहौर से निकली सुबह के 5:30 बजे अपने घर से। फिर उस शख्सियत ने, मैं शख्सियत का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे जर्नलिस्टों ने जिन अल्फाज में बताया वही अल्फाज आपको बता रहा हूं, कि वो शख्सियत लाहौर से निकली और उसने जहाज में बैठी वो शख्सियत, और वो शख्सियत पहुंची रावलपिंडी। उस शख्सियत ने आकर फील्ड मार्शल साहब से अलल सुबह, अब आपने सवाल पूछा कि क्यों ये सुबह सुबह उन्होंने मुलाकात क्यों की। मैंने भी सवाल पूछा दोनों जर्नलिस्टों से, हालांकि याद होगा ये खबर तो मैं आपके सामने सबूतों के साथ रख चुका हूं 2 दिन पहले, लेकिन बहरहाल जैसे आपके जहन में सवाल होते, मैंने भी उन 2 जर्नलिस्टों से सवाल पूछा, भाई सुबह सुबह मुलाकात क्यों हुई। उन्होंने कहा इसलिए हुई कि उसके बाद तो अदालत ने फैसला दे देना था और अदालत ने 1 बजे फैसला दे दिया, इसलिए जो करना था सुबह सुबह ही करना था। तो सुबह सुबह फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात की गई और जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई कि ये किसी सूरत भी रोका जाए, ये हमारे लिए ऐसी एक सूरत हाल बन जाएगी जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आहो बका की, रिक्वेस्ट की, जो भी आपने कहना है, अपना जो भी वजन वो शख्सियत डाल सकती थी फील्ड मार्शल साहब के ऊपर, वो वजन उन्होंने डाला और उनसे वादे वईद लिए कि इसमें आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। दोनों जर्नलिस्ट जो हैं शुरू में नाम नहीं ले रहे थे, फिर मैंने कुरेदा तो उन्होंने नाम भी लिया। शुरू में उन्होंने कहा कि एक अहम फौजी शख्सियत जो है वो भी मोहसिन नकवी साहब को पसंद नहीं करती और वो उनके इस प्लान को भरपूर तरीके से फेल करना चाहती थी। शुरू में मैंने जैसे आपको कहा कि फौजी शख्सियत का दोनों शख्सियात नाम नहीं ले रही थी। कुरेदा तो पता चला कि उनका नाम DGC फैसल नसीर है। मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का उन्होंने नाम लिया और कहा कि असल में फैसल नसीर साहब की और मोहसिन नकवी की आपस में नहीं जमती और फैसल नसीर साहब ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया इस सारे मामले को सेबोटाज करने में। दोनों साफियों का ख्याल यह है कि PMLN को भी एक्टिवेट और PMLN की उस शख्सियत को भी लाहौर में फैसल नसीर साहब ने ही कहा कि आप जाकर मिलिए, और खुद भी फैसल नसीर साहब ने, जो कि फील्ड मार्शल रिटायर्ड सैयद आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री के बहुत करीब हैं, उनसे उन्होंने भी बातचीत करके यही कहा कि ये आप PMLN पीपल्स पार्टी और मौजूदा सिस्टम के पांव तले से जमीन खींच रहे हैं, कालीन खींच रहे हैं, ये गिर जाएंगे, पूरा सिस्टम धड़म करके गिर जाएगा, पहले वाटर टेस्ट कर लें एक दफा, इस मामले को धीमी आंच पर पकाएं, ये मोहसिन नकवी साहब की बात सुन के एकदम हाना कर दें, ये बैकफायर कर जाएगी। दोनों जर्नलिस्ट ये क्लेम करते हैं कि, अब मैंने पहले भी आपको कहा कि बहुत सारे कहेंगे कि गिल साहब आप वहां बैठे हुए थे या जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, इसलिए मैंने शुरू में कह दिया कि आप इसे गपशप समझें, सुनी सुनाई बात समझें, सिर्फ तमाम तफसील नोट करते जाएं, हो सकता आने वाले दिन इस गपशप को दुरुस्त साबित करें और हो सकता आने वाले दिन यही बताएं कि यह सब कहानी थी। दोनों जर्नलिस्टों के मुताबिक जो फैसल नसीर साहब हैं उन्होंने उन्हें कहा कि आप पहले यह तो देख लें कि 3 साल हमने जो किया उसके बाद अवाम उनसे वाकई बदल हो गई है या अभी भी बहुत करीब है, तो एक टेस्टर लगा के देखते हैं, उन्हें निकालते हैं, पिम्स में एक चेकअप करवाते हैं और फिर दोबारा उनको ले आएंगे अगर मामलात जो हैं वो हमारी पकड़ में हुए और अवाम उनसे दूरी इख्तियार कर गई हुई, तो अगर वाकई अवाम का इतना इंटरेस्ट उनमें ना हुआ, को थोड़ा बहुत हुआ, तो फिर उन्हें जो भी हमने बाद में करना होगा, मतलब जहां भी मूव करना होगा वो कर लेंगे। इस बात पर क्योंकि एक शख्सियत लाहौर से निकली और उसका बड़ा वजन है उस शख्सियत का आसिम मुनीर साहब के ऊपर, वो उनकी बहुत बात मानते हैं, बहुत ज्यादा जो भी उनकी आप ये कह लीजिए एक्सेस भी है, इंपैक्ट भी है, उन्होंने भी अपना जो भी जिद शिद करके उनसे ये बात मनवाई और फैसल नसीर साहब ने भी अदारा जाति जो उनके पास डीजीसी की पावर्स हैं, आईएसआई का सारा, और वो भी इस सारे मामले के अंदर आपको पता है कि सारी मार धाड़ कत्लो गारत के अंदर वो भी शामिल हैं, तो उन्होंने भी इस सारे मामले को सेबोटाज किया। इसलिए ये जो लास्ट आखिरी लम्हा था उस तक पीएमएलएन को नहीं पता था कि वो शिफा जाएंगे या पिम्स। अरेंजमेंट भी आखिरी लम्हे किए गए, इसी वजह से अगर आप इमरान खान की बहन डॉक्टर उज्मा की बातचीत सुने तो आपको अंदाजा होता है कि किसी को कोई पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। इवन वहां पिम्स में भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वहां जो अचानक से डॉक्टर लेकर आए, हालांकि बहुत सारे डॉक्टर्स पिम्स से उनको पहले भी उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स भी शायद सारे मुयस्सर नहीं थे। ऐसे डॉक्टर्स लाके छोड़ दिए जो इमरान खान साहब से पहली दफा इंटरेक्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ शिफा में भी सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए हुए थे, किसी को नहीं पता था कि किसने प्रवेल करना है। आखिरकार मोहसिन नकवी साहब प्रवेल ना कर सके और उनकी जगह के ऊपर जो फैसल नसीर और लाहौर की जो शख्सियत है जिनका फील्ड मार्शल के ऊपर गहरा असर रसूख है, वो प्रवेल कर गए और इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल की बजाय उनको पिम्स लाया गया और वहां से वापस भेज दिया गया। तो ये दोनों, ये पूरी स्टोरी हमारे सामने दो बहुत ही मुतबिर जर्नलिस्टों ने रखी। उनका ख्याल ये है, वो कहते हैं कि हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन जो सिस्टम को हम रीड कर रहे हैं, शायद इमरान खान साहब को, क्योंकि उनकी सेहत के मामलात वाकई खराब हैं और यही वजह है, मेन वजह है आसिम मुनीर जख्मों पर मरहम रखने को, आसिम मुनीर कह दिया, मोहसिन नकवी जख्मों पर मरहम रखने को खुद भी तैयार हुए और आसिम मुनीर से भी बात की, क्योंकि कन्वे करने वालों ने मोहसिन नकवी को कन्वे किया कि पानी सर से ऊंचा हो रहा है, खान साहब की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी किसी टाइम, तो फिर आपके लिए मसाइल बनेंगे, इसलिए वक्त पर उनके ट्रीटमेंट के लिए आप हां कर दीजिए। अब दोनों जर्नलिस्ट कहते हैं कि आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितनी सूझबूझ उन्हें है और जितना उनका इंटरेक्शन है मिलिट्री के अंदर बाहर, उनको यह लगता है कि आने वाले दिनों में कभी चांसेस हैं कि शायद खान साहब को दोबारा हॉस्पिटल में मूव कर दिया जाए इलाज करवाने के लिए और उनके इलाज की सहूलतें उन्हें दी जाएं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल इस खबर की जिम्मेदारी नहीं लेता, यह खबर आप बिल्कुल सुनी सुनाई गपशप समझिए, बेशक समझिए आपका मैंने वक्त जाया किया, सारी तफसील आपके सामने इसलिए रखी है कि आप इसे पेंसिल कर लीजिए, मीन इन पॉइंट्स को अपने साथ पास लिख लीजिए, आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट हो उनको इन पॉइंट्स के ऊपर परखिए, मैं भी परखूंगा और फिर हमें पता चलेगा कि इन दोनों जर्नलिस्टों ने जो हमें खबर दी इसमें सच्चाई थी या ये भी हमें मामू बना रहे थे। तो ये हो गई खबर, एक मैंने आपको बताया कि अच्छा ये सिर्फ हमारे पास ये जो खबर है ये सिर्फ मुझे ये दो जर्नलिस्ट नहीं दे रहे, बल्कि 3-4-5 जर्नलिस्ट आप कह लें, 3 जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने खुद भी यह खबर रिपोर्ट की है। मसलन शाहिद मेतला अच्छा काम करते हैं, पहले भी मिलिट्री के अंदर की खबरें निकालकर ब्रेक करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को बिलाखर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, इमरान खान और पीटीआई को रिलीफ भी जरूर मिलेगा, पीटीआई पर सख्ती के दिन खत्म हो गए, जब मई जून में कुछ ठोस मालूमात मुझ तक पहुंची कि इमरान खान को इंगेज किया गया, हालातों वाकयात इसके बरक्स थे, तो इस पर दोबारा काम शुरू किया, तो मजीद हैरान कुन इनकशाफात सामने आए, एक दो रोज में ट्वीट करूंगा, हुकूमत को रुखसत करने के फैसले का काफी अरसे से तो मैं बता ही रहा हूं। ये शायद मेतला भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर शाहनवाज कह रहे हैं कि इमरान खान को बिलाखर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, ये शहजाद नवाज जो हैं वो भी अपना यही तजिया दे रहे हैं। फिर हामिद मीर साहब ने भी यही तजिया दिया कि 15 सितंबर तक उनको लगता है कि इमरान खान को कभी इम्कान है कि उनको हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। हसनात मलिक साहब आगे कहते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के 8 मेंबर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिमांड की है कि जो आपका फैसला है उसे फौरी तौर पर इंप्लीमेंट करवाइए और इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल करवाइए, या आपकी जो तौहीन अदालत हो रही है इसको खत्म करवाइए। यह भी एक बहुत ही खुशाइंद बात है हसनात मलिक साहब ने जो रिपोर्ट की है। फिर इसके साथ ही जो तीसरी खबर मैंने आपको कही थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो किसान इत्तेहाद ने 25 सितंबर को अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। अब 27 को पीटीआई का है, 25 को उनका है। असदुल्ला खान साहब कह रहे हैं कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है और ये उनके नजदीक बहुत ही मानी खेज कोइंसिडेंस है और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, वो इसमें से भी बहुत सारे मानी तलाश कर रहे हैं।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम

0: متاثر ہوگا اور اس کا اثر ہم سب پر پڑے گا, عوام پر پڑے گا.
1: جی, اور جیسے ابھی آپ نے کہا ہے کہ بہت رقم جو ہے ڈنمارک یوکرائن کے لیے وہ بھیجتے ہیں اور اسلحہ وغیرہ خریدتے ہیں, تو اس سے بھی تو بڑا پرابلم پڑتا ہے. وہ پیسہ جو ہے وہ عوام پہ تو خرچ نہیں ہوتا بلکہ وہ گولہ بارود پہ خرچ کیا جا رہا ہے.
0: بالکل, اب آپ نے دیکھا ہے کہ صرف یہی نہیں, اب گولہ بارود بنانے کے لیے تو خود ڈنمارک اپنے یہاں کا دو انڈسٹریاں لگا رہا ہے.
1: ہاں جی بالکل, جولے میں انہوں نے لگائی ہے.
0: اور وہ جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ اسی کے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ دفاعی بجٹ میں غیر متوقع طور پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے.
1: جی جی بالکل,
0: اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیکس دہندگان کی جیب سے, ہماری اور آپ کی جیب سے نکلتی ہیں.
1: درست, بالکل درست. اچھا, ابھی تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں پیرنٹل ریلیشن شپ کی. ابھی نئے نئے سروے بھی آتے ہیں, نئی نئی رپورٹس آتی ہیں, تو ابھی ایک سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے جو تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں ان کے اپنے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے, کیا وہ امپروو ہو رہے ہیں یا جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں. تو اس سروے میں جو ہے سائیکالوجسٹ متھیاس ٹولن جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں بڑا حیران ہوں جب میں نے یہ سروے کیا ہے کہ ریلیشن شپ جو ہے پیرنٹس خاص طور پہ وہ ایک چیلنج سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے جو ان کی بات نہیں سنتے اور ان کو وہ کیسے اپنی بات سمجھائیں. تو یہ جو ہے, حالانکہ ڈینش پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑا خوبصورت سلوک کرتے ہیں, لیکن ان میں ایک فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تو پیرنٹس کی جو یہ تشویش ہے یہ تو مناسب ہے. یہ
0: اس فاصلے کی بڑھنے کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک اور بھی ہے.
1: اچھا,
0: وہ ہے جدید ٹیکنالوجی کا بچوں کے ہاتھ میں آ جانا, خاص طور پر سوشل میڈیا.
1: جی جی جی,
0: اب آپ دیکھتے ہیں کہ بچے فیس بک پر, انسٹاگرام پر اور اس طرح کی جو ٹک ٹاک پر اپنا کتنا وقت جو ہے وہ سرف کرتے ہیں. والدین جو ہیں وہ اس بات میں مگن رہتے ہیں کہ چلو بچے گھر پہ ہیں یا لگے ہوئے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں. جب ماں باپ اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر پہنچتے ہیں, اگر وہ کام کر رہے ہیں تو, اگر وہ بے روزگار ہیں تو ان کی مصروفیات اور ہوتی ہیں, تو وہ بچوں کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیتے. ان سے کبھی بیشتر والدین جو ہیں وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ ان کا آج اسکول میں دن کیسا گزرا.
1: جی,
0: آپ کو یاد ہے ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا, وہ ہے دلہے کی اسکول ہی ڈے.
1: بالکل, وہ کافی پرانا ہے. جی جی, وہ دلہے کی اسکول ہی ڈے.
0: جی, لیکن وہ کوئی نہیں پوچھتا بچوں تمہارا اسکول کا دن کیسا گزرا, ماں اپنے کام سے فارغ ہو کر کیوں کو کن جگہ سے اسکول سے گھر لے آتی ہے اور اس کا اپنا آئی فون آن ہو جاتا ہے اور ادھر اپنا آئی فون آن ہو جاتا ہے.
1: تو یہ پہلے تو بہت نارمل تھا کہ جب بچے اسکول سے آتے تھے تو والدین ان کے ساتھ بیٹھ کے وہی پوچھتے تھے کیا جو کیسا رہا اسکول تمہارا, کیا ایکٹیویٹیز رہیں ان کے ساتھ, بچے جو ہے ان کو اپنے ماں باپ کو بتاتے تھے. وہ اب ایسے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا پرابلم پڑ گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے, بچے جو ہے وہ گھر بھی آ کے جو ہے وہ ماں باپ سے بات نہیں کرتے.
0: وہ صرف یہی نہیں بلکہ ہوگا کہ آج سے 15 دن وہ کتاب دکھائی جائے اور اس پر پھر والدین بچے سے پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا یا یہ تم نے کیا کر دیا. اب کم و بیش یہ بہت بچوں کو والدین, اور پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان کسی نہ کسی طرح اگر کوئی بات ہے اس کے بچوں کو گھر پر موقع, اور وہ اپنے دوستوں
1: جی
0: اس موقع پر جب والدین کو بلایا جاتا ہے ملاقات کے لیے, تو بیشتر والدین جو ہیں کسی نے بڑھاتا ہے اس کو بات اس دن کو نظر. یہ والدین کو والدین کی جو میٹنگ ہیں اسکولوں میں وہاں جانا چاہیے, بچے پر یہ نگاہ اس کہ اسے سوشل کنٹرول نہ کیا جائے. ایک طرف سے بچے کو راہ راست کے لیے یوں کیا किया जाए यूं कहें, लेकिन जब यूं किया जाता है तो खास सरकार के निवासों में और उनका में भी प्रमाण कर और ये इल्जाम लगा दिया जाता कि ये बच्चों पर कुछ कंट्रोल करते
1: अच्छा हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा पिछले महीने कोपेनहेगन का एक इलाका थिंगबिया वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुए थे तो काफ़ी बच्चों ने जो है वहाँ पे कंटेनर्स पे कुछ आग लगा दी थी और अब कोपेनहेगन कमून के जो शासकदान वो ये कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम एक ख़ास उम्र के बच्चे जो है उनको घर से निकलने के पे जो है पाबंदी लगा दी जाए कि वो घर से नहीं निकलें और वो बाहर शरारतें नहीं करें तो ये मुझे समझ नहीं आती कि वो कैसे कंट्रोल करेंगे कि वो वहाँ पे जाके वो घर घर में जाके पूछेंगे तुम्हारे बच्चे कहाँ पे हैं
0: तो ये तो खैर उनको पूछने की जरूरत नहीं है उनको सबको मालूम होता है कि किस घराने में कितने बच्चे हैं कितनी उम्रों के बच्चे हैं और वो क्या करते हैं लेकिन एक चीज़ जो है कि इंडिया में जो कुछ हुआ वो काबिल मजम्मत है
1: बिल्कुल दोस्त जी जी
0: उस पर किसी किस्म के कोई और दूसरी राय हो ही नहीं सकती
1: जी जी जी
0: और वो वालदैन जिनके बच्चे इस सारी कारोबारी में शामिल थे उनको सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चे इस हद तक बेकाबू हो गए कि उन्होंने आवामी चीज़ों को आग लगाई ये गाड़ियाँ जलाई और ये किया और वो किया और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुछ सख्ती करने का जवाब बन सकता है बच्चों पर उन्हें कंट्रोल करने के लिए लेकिन इस तरह से नहीं कि आप बच्चों पर ये पाबंदी लगा दें कि अगर उनकी उम्र फर्द की ये 16 साल है 15 साल है तो वो शाम के फलां वक्त से लेकर फलां वक्त तक घर से बाहर नहीं जा सकते ये इस तरह से गलती है और ये एक गैर मुनसिफाना और किसी की आज़ादी पर कदगन लगाने की ये सोच है जो कि सरासर इस मुआशरे में गलत है
1: तो क्या आप समझते हैं कि जो पॉलिटिशियन है या जो उस इलाके के जो अथॉरिटीज़ हैं पुलिस वगैरह उनको चाहिए कि पेरेंट के साथ जो है एक ताल्लुक करें उनके उनको समझाएं इस बात का
0: बेशतर वालदैन जो हैं वो इस बात को समझते हैं और वो अफसोस भी करते हैं कि अगर खुदा न खासा किसी घराने का कोई बच्चा इस तरह बेराग अभी पर उतर आया कि उसने चीज़ों को आग लगा दी ये किया तो उस पर उन्हें अफसोस होता है
1: जी जी
0: लेकिन ये अफसोस जो है ये महज हाथ मिलने तक महदूद नहीं रहना चाहिए आपने बिल्कुल बजा कहा वालदैन को बच्चों की तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए और मुकामी बल्दियाती जो अहदेदार हैं जो हुकाम हैं वो और पुलिस का महकमा और इंसदाद जरायमकारी की काउंसिल जो है इन लोगों को उस इलाके में देखना चाहिए कि वो क्या वजूहत हैं जिनकी बिना पर ये नौजवान इस तरह मुश्किल हो जाते हैं और चीज़ों को आग लगाना शुरू कर देते हैं ये बहुत जरूरी है
1: आपको तो याद होगा कि चंद साल पहले एक पुलिस का एक प्रोग्राम होता है SSP जिसमें पुलिस सोशल और जो एडवाइजर्स हैं और पेरेंट्स का एक काफ़ी अच्छा उनके साथ बातचीत करते थे और उनको पता होता था कि बच्चे क्या कर रहे हैं और पुलिस भी उनके साथ जो अच्छे तरीके से जो है उनको समझाती थी तो वह पता नहीं वहाँ पे SSP क्या करती है लेकिन
0: आपने जिस प्रोग्राम का जिक्र किया ये बड़ा मुनासिब और बड़ा सूझवान प्रोग्राम होता था लेकिन बदकिस्मती ये है बाकी साहब के हमारे लोग जो हैं वो ऐसे प्रोग्राम देखते ही नहीं
1: या वो हिस्सा नहीं लेते उसमें जी
0: वो पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे हैं या हिंदुस्तानी फिल्में देख रहे हैं जी आपने कभी सोचा है कि कितने पाकिस्तानी ड्रामे हैं जो डैनिश खबरें रोजाना सुनते हैं
1: बहुत कम
0: टेलीविजन की खबरें
1: बहुत
0: उनको ये मालूम होता है कि लाला मूसा ने किसके मुर्ग ने किसके चौधरी के मुर्ग को मार डाला या हरा दिया लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है
1: एग्जैक्टली
0: ये चीजें जानने के लिए हमें लाजमी है हमारे नौजवान जो है वो इन चीजों को बतौर खास लेते हैं उनकी मालूम जो है वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा है
1: ये
0: और हम ये तो आप भी मुतफिक होंगे कि हम भी पहली नेशनल के पाकिस्तानी हैं या गैर मुल्की हैं तो हमारे में बहुत कम जो जान पाया जाता है कि हम डैमेज प्रोग्राम देखें
1: जी हाँ
0: इस तरह के दस्तावेजी प्रोग्राम जो है
1: जी जी बिल्कुल
0: और आप मानते हैं कि मैंने एक घर में देखा कि एक बहुत खूबसूरत पता नहीं कितने इंच का बहुत बड़ा सोने का टेलीविजन पड़ा हुआ है और उस पर एक तौलिया लटकाया हुआ है
1: अच्छा
0: तो मैंने उनसे पूछा कि जनाब ये क्या है कहने लगे कि ये इसलिए कि कोई देखे ना मैंने कहा तो फिर आप इस टेलीविजन का मकसद क्या है, आप क्या देखते हैं? कहते मैं तो वो रखी हुई है, टेपें रखी हुई हैं, वो देखता हूँ। अच्छा। और वो टेपें क्या हैं? वो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, हिंदुस्तानी फिल्में हैं।
1: ये दुरुस्त आपकी बात के डेनमार्क की जो रोज़मर्रा की जो खबरें वगैरह या न्यूज़ वगैरह को हमारे लोग बिल्कुल नहीं सुनते। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कौमी दैनिक खबरों से थोड़ा सा आगे चलें तो इंटरनेशनल कुछ न्यूज़ हैं, उस पर मैं आपका तबसरा लूँगा। आपको पता है कि जो मिडिल ईस्ट में जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उसमें पेट्रो डॉलर का भी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अरबी मुल्क जो है वो नहीं चाहते कि अपना तेल जो है वो डॉलर में बेचें, और अमेरिका जो है उससे बहुत डरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका का जो नेशनल डेट है वो 40 ट्रिलियन डॉलर हो गया, जबकि उनकी जीडीपी जो है वो सिर्फ 32 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये जो इतना वो, क्योंकि वो कहते हैं वो सिर्फ डॉलर छापते जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में डॉलर उनके बिकते हैं, तो इससे तो पूरी दुनिया की मौशियत जो है वो उसको धक्का लगेगा बहुत ज़्यादा।
0: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहना कि जी अमेरिका जो है वो इसका घुटने टेक जाएगा या गरीब हो जाएगा या ये होगा वो होगा,
1: जी
0: वो बखूबी जानता है अमेरिका के उसे क्या करना है और किस से पैसे निकलवाने हैं। अभी आपने देखा है कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो फैसल चल पड़ा है, और उस पर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने जो सख्त तरीन, मेरे ख्याल में यूरोप के बाहर वो पहला मुल्क है जिसने ट्रंप को खूब सुनाई है,
1: जी हाँ,
0: और उसे और ट्रंप साहब से ये कहते हैं कि जी कनाडा जो है वो हमारी एक रियासत है।
1: वो तो चाहते थे कि वो अमेरिका की 51 स्टेट बन जाए वो,
0: जी। और इसी तरह के अहमकाना ख्याल जो हैं ये पूरी दुनिया को एक अजीब किस्म के सियासी, इकतसादी और समाजी मिसाइल की तरफ धकेलते जा रहे हैं, और इस जुनूनी शख्स को जो कि इंतहाई एक तरह से वो नस्ल प्रस्त आदमी है, उससे कोई जिस पर कभी एतमाद किया ही नहीं जा सकता, वो एक घंटे में अपने ही एक बयान को कम से कम 6 मरतबा बदलता है। तो इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए अगर मौजूदा इक्तसादी सूरत हाल जिसका आपने जिक्र किया है उसको देखा जाए तो भले दिनों की उम्मीद बहुत कम है।
1: अच्छा, तो आप समझते हैं कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब रहेगा बरकरार अरबी ममालिक में?
0: बिल्कुल रहेगा, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है। वो अमेरिका के अपने मुफादात की वजह से मश्क मुश्ता में रहना ये अलग बात है, लेकिन अरब खुद चाहते हैं कि वो यह क्यों नहीं इसको छुट्टी करवा देते वहाँ से।
1: लेकिन ईरान के खिलाफ जब ईरान ने जब अरब ममालिक पे हमला किया तो उन्होंने तो उसको नहीं रोका, मदद नहीं की।
0: सऊदी अरब में सबसे ज्यादा अमरीकी कुव्वत है, वहाँ पर अड्डे हैं इनके,
1: जी
0: इनका ऐसा है इलाका है जहाँ से जहाँ दूसरे मुकामी सऊदी तक नहीं जा सकते, तो क्यों नहीं उनको छुट्टी करवाते, किसके खिलाफ बता रखा है? अगले दिन एक बात हो रही थी कि जी तुर्की और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ये जो मुआहदा किया है ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं कि ये मुआहदा बहुत अच्छा है और ये इन तीन मुल्कों के इत्तेहाद की एक लाजवाब मिसाल है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मुआहदा किसके खिलाफ है? क्या आप अपने दुश्मन की निशानदेही कर सकते हैं?
1: उस मुआहदे में जिक्र नहीं किया गया कि किसके खिलाफ है, वो सिर्फ वो एक डिफेंसिव अरेंजमेंट है मेरा ख्याल है।
0: बिल्कुल दुरुस्त है, डिफेंसिव है, लेकिन आपको अपने दुश्मन का तो पता होना चाहिए कि किसके खिलाफ कर रहे हैं, और जो आपका उस खत्ते में पिछले 75 साल से दुश्मन है उसके मुताबिक तो आप बोलते नहीं।
1: वो इसराइल के खिलाफ वो ऊपर नहीं करते,
0: उसने तुम्हारी उम्मत की एक नस्ल जो है वो तबाह कर दी।
1: बिल्कुल, खासतौर पर गाजा में तो बड़ा जुल्म किया उन्होंने। अच्छा, अभी हम इसराइल की बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि इसराइल में एक गाज़ा में जो है एक बच्ची थी हिंद रजाब, जिसको जिसकी जो वो एक गाड़ी में बैठी हुई थी कार में, तो उसको IDF इसराइल की फ़ौज के कुछ अफसरों ने उसको 365 गोलियां मार के उसको जो है ना उसकी कार को उसको बच्ची को भी मार दिया, उसमें जो रेड क्रिसेंट के लोग बचाने के लिए आए थे। और हमेशा इसराइल हमेशा कहता है हमने कोई गलती नहीं की। अब पहली दफ़ा ये हुआ कि इसराइल की हुकूमत ने और उनकी फ़ौज ने ये खुद माना है कि हमसे ये गलती हुई है और हम उसकी जो है एक उसका पता करेंगे वो हुआ कैसे है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी मदर जो है बच्चे की माँ वो कहती हैं कि इट्स टू लेट, मैं नहीं समझती कि इसराइल जो है कुछ करेगा, लेकिन वो केस जो है बहुत ज़्यादा पूरी इंटरनेशनली उसके बारे में बात हुई थी।
0: आपने कहा कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी उसके खिलाफ उसके मतलब बातचीत की जा रही है
1: जी,
0: बाकी साहब ये बिल्कुल वही बात है कि खुद ही कातिल खुद ही मुंशिक
1: खुद ही, हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है,
0: इसराइल के जो जंगी जराइम है और उसके अलावा इसराइल के जो इंसानी जराइम है फिलिस्तीनियों के मुताबिक, उनकी अगर फहरिस्त बनाई जाए और उनको देखा जाए कि वक्तन फवक्तन उन पर इसराइल ने जो इकदाम लिए वो किसके फायदे में थे, वो सारे इसराइल के अपने थे। अब इस मामले का जिसका आपने जिक्र किया है, अगर वाकई ही इसराइल ईमानदाराना तौर पर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो इस इंक्वायरी टीम में वो रेड क्रॉस के या कोई आर्मी मुबसरीन जो है उन्हें क्यों शामिल नहीं करता?
1: जी हाँ, उसकी बच्चे की माँ ने भी यही कही जो आप कह रहे हैं कि उसको जो है वो एक इसराइल से इसराइल नहीं करें बल्कि इंटरनेशनल कमीशन बनाया जाए उसके लिए,
0: नंबर एक। और अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो जो जो सहूनी आबादकार हैं जी, मैं तो मेरे नज़दीक ये सब सहूनी हैं
1: जी,
0: मैं कोई तो ये नहीं कहता कि जी इसराइल रियासत जो है वो अलग है और ये है, क्योंकि सहूनीत की पैदावार रियासत और उसके रहने वाले जो हैं वो उस नज़रिए से कभी दूर नहीं हो सकते जो सहूनीत पेश करती है।
1: दुरुस्त।
0: और इस सब चीज़ को अगर आप देखा जाए तो जो भी जंगी जराइम हुए हैं और इस तरह से जिस तरह गाजा का मलिया मेट कर दिया है, नेस्टो नाबूद कर दिया है, अब आप देखिए कि दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे पर जो कि फलस्तीन का हिस्सा है उसमें जिस तरह से सरकारी मनसूबा बंदी के तहत टेंडर मांगे गए हैं कि इतने नए मकानात बनाने हैं, नई आबादी कायम करनी है, हमें टेंडर चाहिए, तो ये जो कुछ हो रहा है इस पर ये जो इस्लामी इत्तेहाद वाले हैं ये तो बिल्कुल ही खामोश बैठे हैं, लेकिन मगरब जो कुछ थोड़ा बहुत बोलता है वो इस, आपको याद है कि सात मुल्कों ने, यूरोप के सात मुल्कों ने मुश्तरका तौर पर इसराइल की मजम्मत की है और इस माहदे को आलमी कानून के खिलाफ करार देते हुए कहा है कि इसको रोका जाए, और अगर ना रोका जाए तो उनका ये भी कहना है कि वो किसी तरह से इसके खिलाफ तदबीरी इकदाम भी लेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया।
1: लेकिन नसर भाई उनके पास पावर भी तो नहीं है, वो क्या करें क्या बेचारे अब,
0: कम अज कम वो चीख तो सकते हैं, बोल तो सकते हैं,
1: बोल तो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक और आखिरी ख़बर पे मैं आपकी राय लूँगा, वो ये है कि अब ट्रंप साहब ने कनाडा और ग्रीनलैंड के बारे में तो कहा ही था, अब उन्होंने एक और नया शोशा छोड़ा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अब अमेरिका का हिस्सा होगी, उन्होंने एक नया नक्शा जारी किया जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लिखा है अमेरिकन टेरिटरी, इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती है?
0: देखिए, इन अहमकाना इकदाम को सिर्फ ये कहकर नज़रअंदाज कर देना कि इनमें कोई असर नहीं है
1: जी,
0: ये खुद बताते खुद एक अहमकाना बात होगी
1: जी।
0: सदर ट्रंप साहब ने, आपको पता है कि पनामा कैनाल के मुताबिक क्या कहा था
1: जी, जी
0: अभी तो उनकी नज़र नहर सुवेज पर नहीं पड़ी वरना वो कहते कि ये यमन की हिस्सा है,
1: लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तो ईरान बैठा हुआ, वो कैसे इनको जाने आने देगा?
0: सिर्फ ईरान नहीं है, उसके साथ ओमान भी है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: उसका एक हिस्सा जो है वो ओमान की तरफ,
1: और ओमान को भी धमकी दी अमेरिका ने कि हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे।
0: बिल्कुल बजा कहा, और जब ऐसी सारी सूरत हाल है तो मुझे इन अरबों की जहनीत पर सोचने पर मैं मजबूर हो जाता हूँ कि ये किस मसीहा से अपने बीमारियों का इलाज जो है वो तलब करते हैं। ये भागते हैं अमेरिका की तरफ, हर चीज़ जो है वो अमेरिका के मुताबिक इनके जहन में बैठा हुआ है कि वो इनका खुदा है और वो इनको बचाएगा।
1: तो आपकी नज़र में वो क्यों करते हैं, अरबी ममालिक क्यों करते हैं ये?
0: इसलिए कि उनके पास बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है। मुझे ये कितने इनको तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास कम अज कम अगर इस्तेमाल के लिए नहीं तो दिखावे के लिए अपने दिफा की खातिर कुछ चीज़ मौजूद है। मुझे ये बताइए, कोई अरब मुल्क किसी किस्म का कोई असला बनाता है? इन्होंने अपने यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री कायम की है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं की।
0: और जब अमेरिका से ये इतने बड़े बड़े सौदे करते हैं, इतनी भारी कीमतें अदा करते हैं, तो उसके बावजूद भी इनको उस असले के इस्तेमाल के 100% इख्तियार नहीं होते।
1: वेरी ट्रू। चलिए, हमारी तो ख्वाहिश है कि थोड़ी सी अकल आ जाए इनको। अब जो इनके साथ जो हुआ है, ईरान ने किया है, तो उससे इनको थोड़ी सी अकल आए और वहाँ पे कुछ चेंजेस लाएं। जैसे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया संडे के दिन। और
0: शुक्रिया, और अल्लाह ताला इस सारी सूरत हाल से उस खत्ते के लोगों को, उस खत्ते को महफूज रखे। और ये जो नई अमरीकी इस्तेमालियत सामने उभर कर आ रही है, खुदा इसका खात्मा करे।
1: थैंक यू वेरी मच रजा भाई। ये था आज का हमारा प्रोग्राम बाशी के संग। हमारे साथ नसर मलिक साहब मौजूद थे। तो अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते हमने इरफान जिलानी साहब को बुलाया है, उनसे पूछेंगे कि उनकी पार्टी ने ये जो कुछ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कर रही है, उनकी पार्टी जो है उसको क्यों नहीं रोकती, क्योंकि वो तो पार्टनर है उनकी उसमें। तो देखिए वो क्या कहेंगे, बहुत समझदार पॉलिटिशियन है। तो अगले हफ्ते तक के लिए सामेन में इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84। ईमेल radio@snipelay.com।

0: नालो नाल चलती है रहमान
1: जी। बाबा जी मुझे डर है कि बाबा जी जलाल में ना आ जाए कहीं ये गाना सुन के, लेकिन आइए गाना सुनते हैं।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन।